0: राग पहाड़ी में कंपोज किया बुजुर्गों ने। दास्तां है, एक मियाँ बीवी हैं तो वो अपनी बेगम का इम्तिहान लेने के लिए भेस बदल के कह रहे कि मैं जा रहा हूँ तो मैं 2 दिन बाद आऊँगा। तो अगले ही दिन शाम को भेस बदल के आके नॉक करता है दरवाजे को और कहता है कि म्यूजिकल ये
1: स्टोरी
0: है तो जी जावेद।